0: नारी जंतु पाए का संभाले सम्राज जिनकर तय करने की चिंता करनी था सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुहाय स्वास्थ्य तिस दीवान सत्यनाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लख निके लख गुना प्रमाण लख तप

राजान पांडो ही पांडु क्या पंडा बना को नानक पंडा बहरा एक सच्चा सोय जित मुख सदा सलाया पागर तिचा नानक ते मुख जिले।

तिन्ना महला ना पाए दूज पाए करुपी दुख पावे है अगे गए गुणवंती नित गुण रवे।

0: वाहिगुरु जी का
1: खालसा
0: वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभं गुर प्रसाद। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास। आस लग जीव चिर भयो दर्शन देखे, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दह दिश प्रमे थक आए प्रभ की शाम। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखन हार दयाला। नानक घर के गोले दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु। नानक दे कर हाथ डोलन तेरा को प्रभु। नानक दे कर हाथ। परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा च गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों, सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दा पावन शब्द भाई साहब जी पासों सरवण किया। पवित्र बाणी पावन शब्द दी विचार नाल जुड़न वास्ते मन बिरतियां नूं एकाग्र करिए। सतगुरु जी अज दे शब्द दे राही जो मनुखी दुनियावी जीवां नूं समझाउणा चाहुंदे हन, एक मन एक चित हो के समझण दा यत

जाए वह फिर जड़ी अंदरों कुरूपता वाली ने जिन्हों के अंदर जिन्होंने रूप भयानक बना लिया काम क्रोध लो मोहंकार करके फिर अगे तो दुखी इत्थे दुख कनेरिया अगे ठौर ना ठाओ यह दुहागण इत्थे थां नहीं मिलनी अगे उहदे घर च थां नहीं मिलनी फिर लोक गयो पर लोक गवायो जिहड़े पेके घर सियाणे हुंदे आ ना पेके घर उह धी नूं पुछदे आ तू सहुरा घर छड के क्यों आई है सानू सचो सच दस ते जे उह सियाणे हुंदे ते बांह पकड़ के धी दी लै के जांदे आ चल आमो सामने बैठ के गल कर कौन माड़ा ते कौन चंगा वह फिर जदों धी की गल ते सहुरियां की गल सुनदे आ फिर जे धी गलत होवे उहनू कहिंदे अज तो बाद पेके ना बड़ी अज तो बाद वह भी दरवाजा तेरे वास्ते बंद हो गया फिर लोक गयो पर लोक गवायो ते जे पेका घर सुचज्जा होएगा उन्हें फिर उन्हों कहना धीए सहुरे घर दे विच इदां नहीं इदां रहीदा इस ढंग नाल रहीदा फिर वह घर वस जांदा असीं आप ही घर वसा रहे हैं आप ही उजाड़ रहे हैं माफ करना यह सच है असीं भी ये पेके घर ही आए हुए हैं आ पेके घर तो एक दिन जीव इस्त्री ने आ शरीर पेका घर छड के सहुरे घर सबना सहुरे वंजना जाना तो सारिया ने अपा पर उत्थे दरवाजा किदे लई खुलना किदे लई नहीं खुलना देखना ही पैना फिर मुड़ के पेके घर आके फिर शिकायत की सतगुरु कहिंदे चिंता ना कर आ मैं तैनू सुहागण बना दिया क्योंकि गुरदेव माता गुरदेव पेके घर च मां बाप कौन है गुरदेव माता गुरदेव पिता आ है पेके घर दा माई बाप फिर गुरु ग्रंथ साहब जी नू कहो महाराज मेरी सहुरे घर बन आवे मेरी सहुरे घर विच ढोई बन जाए मेरी पति परमेश्वर नाल बन आवे सतगुरु कहिंदे आ मैं तेरे अंदरों अवगण कढ के गुण तैनू भर दिना तैनू सुहागण बना दिना फिर तू सुहागण हो के जदों जावे ते तेरे घर लई उत्थे स्वागत भी होएगा और तैनू उस घर दे विच थां भी मिल जाएगी जिन्हें सहुरा घर सवारना है उन्हूं पहलां पेका सवारना पैना है जिन्हें पेका नहीं सवारिया वह कदे सहुरा घर नहीं सवार सकती ये भी ध्यान रखियो दोवें गल्लां ने ना लोक गयो पर लोक गवायो ते दूजे पासे लोक सुखी है पर लोक सुहेले जे लोक सुखी कर लिया पर लोक आपे सुहेला जे लोक दुखी कर लिया ते अगे केड़ा सुख मिलना है इत्थे दुख कनेरिया अगे ठौर ना ठाओ केवल पढ़ पढ़ के अगे नहीं सी लंघना उहदे चो गुण लेने सी शब्द विचों सिख्या लेनी सी मत लेनी सी गुरु साहब दी तो गुरु अमरदास महाराज जी फिर समझाउंदे आ कहिंदे जिहदे अंदर दवैत भावना सी ना बाहरों होर ते अंदरों होर उन्हें फिर अंदर दी एक दिन करूपता सामने आ गई हाँ जे गुरु दी नज़र पै जाए तो महाराज कहिंदे कुथरा नहीं ये तां सुथरा है पै गई ना गुरु साहब दी नज़र गुरु साहब ने तो रीठियां चो कड़त्तन खत्म करती गुरु नानक साहब दी नज़र पई ना रीठा साहब ते वह कुड़त्तन ही खत्म कर दिती जोगी सिद्ध जिहड़े सी हैरान हो गए कहिंदे की कीता तुसीं इस रीठे विच ये मिठा ही बड़ा हो गया ये गुरु नानक साहब दी नज़र पै गई उहदे ते जे साडे ते गुरु दी नज़र पएगी असीं दुहागण तो सुहागण नहीं होवांगे पर नज़र पवे तां सही तां गुरु महाराज जी

सतगुरु महाराज कहिंदे जड़ी गुणवंती सी सुहागण मन गुरमुख नित गुण रवे, वो अपने नित प्यारे दे गुण गाउंदी है। वो गुण गावां दिन रात नानक चाओ, उहदे अंदर चाओ इन्ना हुंदा है। वो अपने प्यारे परमेश्वर दे ही दिन रात गुण गाउंदी है, क्योंकि उहदे हिरदे विच एक अपने पति परमेश्वर का ही नाम है।

साविन नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं करते रहे।

सकल सामग्री तुमरे तुमते हो सो तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की गाते श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम भगवती समरके गुरु नानक लीते आए फिरंगद गुरु ते अमरदास रामदास भी सहाय अर्जुन हर गोविंद नो सुमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईए जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सुमरै करनो निदा बिताए।

स्नान चौकिया चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखांगा मनी वा मतुची मत पत दाखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहायदा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ।

हर जस लिखन न जाए, सो कोटल गुरु सेवी अहनस सहज सुपाए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। जैत श्री महला पंजवा, संत कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक दर्शन प्यासी दिन सरात,

जय तेरा अंतरा परब्रया सब निदान दास अष्ट सिदान ठाकुर कारतल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइय तेरा अंतरा परब्रया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पार सब त्यावहें सब त्यावहें तुदजी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हरते अब हो संतो जी सब दुख मिसार नहारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पर ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हरते आवहें हरते आवहें तुदजी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पाए जैन हर ते आया जी तिन तूटी जम की फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवे आ जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप सुमासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप ताप ही जप ही बयंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझे बड़े अभर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुझे आपे पावै सोई वरत है जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हों पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिस नाओ कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुदे आप विछोड़या आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिंदु जा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल
विजोग मिल विछोड़या संयोगी मेल, जिसनों तू जान आहे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद मिंदु जा अवर ना कोई, तू कर कर विखे जाने हैं सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला तित सर्व रड़ाए, पाईले निवासा पाणी पावक तिन्हे किया, पंकजो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तहें डूबी अले, मान एक नाचे तस्मूड़ मना, हर विसर तेरे गुण गलया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवंत नानक तिन की शरणा, जेना तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मेल साध संगत भज केवल नाम, संजाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जब तप संजम धर्म नाक माया, सेवा साध न जन हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की रखो शर्मा, जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जन हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की रखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ दे मुहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबै रिनको आज संगरिये, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शत्र हमारे मारिये, आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो मोहे रखण हारे, साहेब सन सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दास कंता, काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार हैं तहें हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो,
आद्यंत इक्कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकन को सिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चिंटी दे कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के पढ़ पढ़ की जन्ने। जाव उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तव देहे अपारा। जवे आ करख करत हों कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहित नरालम, जानत बेद भेद अर आलम। रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीर अनाद असंभ। ताका मूड़े उचारत पिता, जाको पीव ना पावत बिदा। ताको कृपाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहे सदा शिव, रंकार का चीनत नह भिव। आप अपनी बुदय जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कि बिद सजा प्रथम संसारा। इक्कै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा। अंड जेर से तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी। कहों फूल राजा हवै बैठा, कहों सिमर भयो शंकर अकैठा। सगरी सृष्ट दुखाए अचंपव, आजुगा स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख अबार सिख संघरो। दुष्ट जिदे उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणघाता। जे आस तुझे तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तुहाए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को इक बार ते है, ताके काल निकट न ऐ है। रक्षा हुए दाहे सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला। कृपा दृष्ट तान जाहे न हरे हो, बाकी ताप तन कुमाए हरे हो। रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फांसती ताहे ओबारा। जिने नारे नाम तिहारो कहा, दरिद्र दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी। सर्वठ मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी। सर्वठ मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई।
सवैया पाए गहे जबते तुमरे तबते को आंक तरह नहीं आने आओ। राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुपेद कहे हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे हो सब तो हे बखन्यम दोहरा सकल द्वार कौ छड़ कै गए हो तो हारो द्वार मही गहे की लाज अस गोविंदास तुहार सकल द्वार कौ छड़ कै गए हो तुहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तुहारे। राम कई महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन मजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दो तंगावो हरी केरा मान जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ। सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दूख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गलना समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नहीं घर तेरा है करता तेरा सब किछ है जिस दे हैं सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या ना ही घर तेरा है साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जेन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसया जेन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनहो संतहो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुरकरम पाया तुद जिनको से राम हर के लागे कह नानक तैस कहोआ तेते खारे अनहद बाजी आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी
कहते पवित्र सतगुर रहा पर बुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजी अन्न हद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्न हद तुरे मुंदा भणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत्य संतोख विचारो अमृति नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अदारो जे को खावै जे को पुंचाए तिसका हुए उदारो एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस भयोई तरस भया मेहरा मत होई सद

0: मां तन मन थीवे हरेया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवे हरेया। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब

जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। सिखां दा माननीवा, मत उची मत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा साई दा तार जीओ, श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वार।

संत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सिरा चित्तवो अण दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत दर्शन प्यासी दिन सिरा चित्तवो अण दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत संत सुन यार हमारे सज्जन

लालन तै पाया आप गवाया, जैतन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हों गिद्दी, गुण अवगण ना पछाने गुण हार ते पाया रंग लाल बनाया, तिस हब्बो किछ सोहंदा जन नानक तन सोहागण साई, जिस संग पथार वसंदा यार वे नित सुख सोखिंदी सा मैं पाई।

दयाल सद नव रंगिया वड पाग पाया गुर मिलाया साधक सतसंगिया असमन सा सगल पूरी प्रिय अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सोखिंदी सामें गुर मिल पाई असमन सा सगल पूरी प्रिय अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सोखिंदी सामें गुर मिल पाई। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

और बड़ी तेजी दे नाल तीर हमेशा उन्ने बल नाल अगे नूं जांदा है जिन्ना बल ला के उन्नू पछां वल कमान दे चिले नूं खिचे आ जावे, उन्नी तेजी नाल अगां वल नूं जांदा है। पेंडेखां बली सी जी, इहदे च कोई दोरावा नहीं, बड़ा जोधा सी इहदे च वी कोई दोरावा नहीं, उन्हें बड़ा बल ला के कमान का चिड़ा खिचया, तीर छड़िया और बड़े वेग दे नाल, मतलब बड़ी तेज गति दे नाल शूकदा होया धन गुरु कलगीधर साहब वल वह तीर जांदा है। ते कवि जी किने एक अलंकार वरत्या, कहिंदे जन सर्प कुली तछक लसंत, कहिंदे इंज प्रतीत हुंदा सी वी जिवें एक काले रंग का सप नाग जिहड़ा ना वो चमकदा होया बड़ी तेजी वल तेजी दे नाल वध रहा।

आप जी करो कृपा अमृतमयी बाणी विचों पावन हुकम बख्शोक अनुसार जीवन ज्योंदी समरथा सूज बख्शनी सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया त्रणाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की तवै चलायो सब सिखन को।

गुरु प्रसाद जय कर कीरता खिय करते कहे विचारो तित कर गावो सोहला सवरेहो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरभउ का सोहला वारीत सोहले सदा सुख होय राओ नित नित जीअड़े संभालिया देखै गा देवनहार तेरे दान कीमत ना पवै सदा ते कौन समार संबत सा लिखिया मिल कर पावो तेल देवो सजन आशीषड़िया जो होवै साहिब सो मेल घर करियो पहुंचा सदड़े नित पवन सदना रा सिमरिय नानक से देवन राग आसा मल्ला पहला छे घर छे गुरु छे उपदेश गुर गुरे कोवे सनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वनाई तोय रहाओ विश्वे चसिया घड़िया पैरां थित्ती वारी माओ आ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राख तनास्त्री मल्ला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तार का मंडल जनक मोती धूप माले आण लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनाता शब्द व जंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोय को सहस मूर्त नना एक तोई सहस पद बिमल नान एक पद गांध बिन सहस तव गांध विचल तमोई सब में जोत जोत है सोए तिसदे चानन सब में चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोतिस पावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरांद लोभित मनो अनदर मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारें को होए जाते त्रिनाए वासारा गौड़ी पूर्वी मल्ला चौथा काम क्रोध नगर बो परे अमल साधु खंडल खंडाए पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाए कर साधु अंजली पन वड्डाए कर डौत पन वड्डाए रहाओ साकतर साधना जानिया तने अंतरों मैं कंडाहे ज्यों ज्यों चले चवै दुख पावै जमकाल साहै से डंडाहे हर जनार नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सो खंड मंडाए अमगरी मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड्डाए जन नानक नाम अधा टेक है हर नामे सुखमंडाए राख गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो विनती सुनो मेरे मीता संत टैल की बेला पिया खाट चलो अरला गे विष्णु सहेला औद कटैदन सरे नारे मन गुर मलका सवारे रहाओ ए संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए प्यावे रस कात कथा तन जानी जा को आए सोई बिहाजो हर गुर ते मने बसेरा निज कर मैल पावो सुख सहजे।

है सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगट दिन आगर गहर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सब विद रतनागर संत मराल करह कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कालजुग दुर्त दूर दरबे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर जाको मुन त्यान तर फिरत सगल जुग कबु कह को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गहनत जात का बिलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेक किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर।

अंतर्गत तेज पुंजत है लोक परगासे, देखत दर्श पटक प्रम्पजत, दुख पर हर सुख सहज बिगासे, सेवक सिख सदा अत लोभत, अल समूह ज्यों कुसुम सुबासे।

अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीरत वंत सदा सुख संपत, हृदय अर सिद्ध ना छोड़ साथ, दान बड़ो अतवंत।

अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपन आप ही उपायो। सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुर असुर नर।

जे सत गुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे जोखिनंग। जे सत गुर सिमरंत जे सत गुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिनंग। जे सत गुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सत गुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जे सत

जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़ियो पास, ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो। दुख दरिद्र अंधियार को नास।

नहीं त्रास, जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निसबासुर हर चरण निवास, ताते संगत